रंग राता ब्रह्म जन जन्म पर ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सैस स्यान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुरबड भागी पाए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर कह गवे सुन कर बचन कर आगाने मन संतोख आत्मपतिया ने पूरा गुर ख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट फिखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक निस पावे तिस लय मिलाए।

अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाय ताकि कीमत किन न पाई अनेक भगत बंतन नित करें चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो हरस पावे जन को अमृत पीवै अमृत होए उस पुरख का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगट गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे वो माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परम मोह दुख तय ते नासे तब त माहे ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरन उपदेसे पाचो का नरपा होय बसे सगल व्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थेच पाए चूके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही

जाहे जिस तन का चार कों टुटतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कारित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत।

तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचू काचा, आवागवन मिटे प्रभ से, आप त्याग शरण गुरुदेव, एवं रत्न जन्म का होय उधार, हर हर सिमर प्राणदार, अनको पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए, सांगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटुंब अरबनता, एंते कहो तब कवन सना था, राज रंग माया विस्तार, एंते कहो कवन छुटकार।

आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाओ, सहर्ष

एक राध पराठ गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत।

एहि स्वभाव नेत्रोपेक दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण तोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक वस्तु दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाय नानक रहया सर्व समाय प्रभक्षण दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतिपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण।

पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमुख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा बन पाए। भा भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सुकानी शोभा तन बंता, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभु तिहु निवास सारे।

ही फिर जाप व्यस्तपति जब अकार ही कछ न दृष्टे था पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सुख कौ कस व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभु के व्रतने तब बंद मुक्त कौ किस कौ घनी जब एक हर अगमय पाय तब नरक स्वर्ग कह कौन होता जब निर्गुण प्रभु सैड सु पाए तब शिव शक्त कहक दिठाए जब आप अपने ज्योत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन जलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अब ना शिशु ज्ञापन आसन तह जन्म मरण कह खा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कौ किस होए जब अवगत अगोचर प्रावे का तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अकोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख बात होता तै बिन मैल कौ क्या तोता जय निरंजन का निर्वाण तै कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूप।

हो नाथ। जिस राखे जिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मन विसारे। जैस ताज अवर कहा को जाए, साव सिर एक

दर्शन पेखत उद्रत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवार अंतर जामी पुरख भरदा जिस

दिवस अष्टपदी संत संग अंतर प्रवटी ठा नाम प्रभु का लागा मीठा सागर सामग्री एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौनिध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाध अनहद तैनात कह न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया दिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी वह संतर माहे चार कुंट दह दिसे सम

Very good day. कोई न जाने तुमरा अंत ऊँचे ते ऊँचा सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुमते हो ऐसो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याए

मानस की गति सुकहु टल गुर सेविय, एहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी।

कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जीव जंत सब भये पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिघन बिनाशन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ आया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बैरंगन संग अलापै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैर भी बिलावली पनिया की गावै बंगली पुनस लिखी की परिवारी ए पैरो की पांचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावै बंगाल मदमात गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापै संग रागनी पांचो थापै गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी से होती उचारी तनाश्री ये पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खाओ खोटाओ पौरा नंद गाये अष्ट माल कौशक संगलाये पुण्य आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पांचो वार जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिम मगलन सुहाए सरस बान औ आ

सावरी ते पाछय सिद्ध भी आलापे श्री राग सिंह पंचो थापी सालो सारंग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ मीर खष्टम मेघ राग में गावे पंचो संग बरंगन लावे सूरठ गोंड मलारी तुनि पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुर सोहू पुन कीनी मेघ राग सिंह पंचो चीनी

दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवां। जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दईए वसाया, सुख सागर गुर पाया तां सहसा सगल मिटाया। जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दईए वसाया, सुख सागर गुर पाया तां सहसा सगल मिटाया। हर के नाम की बड़ियाई,

करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहि सोई हम पाई प्रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिस नौ तू जानाए सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले निवासा। पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियाले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, सिरिया स्तुजा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौपई को कहै, चौपई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहुभेद कहे हम एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कार,

ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने।

ऐसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस्तव नैन नर नैन है तुहे तो कहो, सहस मूर्त नना एक दोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस्तव गंध इव चलत मोही। साब मैं जोत जोत है सोए, तिस तै चानन सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभाव सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो,

ज्या कारण ज्या सुंडया निरुपायो ताहे एका विकट घाट कट माही खोल को पाट मैल के ना जाही देखे टल टलक तेन जावा रह लवट कट पर चू पावा ठठाई है दूर ठग नीरा नीठ नीठ मन किया थीरा जिन ठग ठगया सगल जग खावा सो ठग ठगया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजै डर जाई ता डर मैं डर रहा सुमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे निडर हुआ डर उरु होए भागे ढड्डा ठेगा ठूंढे गतियाना ढूंढते ही ठह गए पुराना चढ़ से मेरे ढूंढ।

गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, उती जो प्यास पियूस पिवन की, बंचत सिद्ध को बिद मिलायो, पूरन पो मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दे दिस्तायो, गोविंद वाल गोविंद पुरी सम, जलन तीर पिपास बनायो, गयो दुख दूर परखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, गोविंद वाल गोविंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।

गहना में समस्ती स्वरूपे कलंकन बनाने कलंकी स्वरूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो

0: चतुराई
1: ना पाया किले तू सुन मन मेरे
0: ए माया मोनी जिन एक परम बुलाया
1: माया दा मोनी तिने कीती जिंट गोली पाया
0: कुर्बान कीता तिसे मिठो जिन मोह मीठा लाया
1: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया
0: ए मन प्यारे तू सदा सच संभाले ए कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले ऐसा कम मूल्य न कीजे जित अंत पछताइए
2: सतगुरु का उपदेश तू होवे तेरे नाले
0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने आखे ता वेखे सब तू है जिन जगत उपाया सुन नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया जी जान सब तुद उपाए एक वेग पर सराया।

0: बहुत नहीं बोलना।
1: गुरप्रसादी
0: जी ने आप तजिया हर वासना समाणी।
1: जो
0: तू चलाए तिवे चले स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे।
1: तू चलाए तिवे चले जिना मार पावे,
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे।
1: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे।
1: ओ सुहेला सबक सुनावा, सबक सुनावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया।
0: ए दिन गए मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया।
1: एक फिरे करे रे करे गला गली किने न पाया।
0: कहे नानक समझ सुहेला, सतगुरु सुनाया।
1: पवित होए से जना जिन हर त्याया,
0: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया।
1: पवित माता पिता कुटुंब सहित सुपवित संगत सबाया।
0: कहते पवित सुनते पवित से पवित जिन्नी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर त्याया।
0: कर्मी

0: संभाले
1: पढ़ने गुण बिन अवर न जाने कोए
0: कहे नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए पावे मुकत न होते कोई पूछो विवेक किया जाए
1: परम आवे
0: फिर मुकत पाए लाख चरनी सतगुरु सबद सुनाए
1: नानक विचार देखो सतगुरु मुक्त

सिर सका ताप पाए के करता पे हुकम वर्ताए तोड़े बंधन हो वे मुकत सबद मन बसाए।

0: मनो के उसारिये ए वरदाता जे अगन में हार पहुंचावे
1: उसनु के पोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे
0: अपने लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभालिए
1: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये
0: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया
1: माया अगन
0: करते खेल रचाया परवार पला।

0: हर गाँव मंगल सखिए सो सुख न व्यापे जिन्ह तेरा रचन रचिया सोहर मना बसाया देखो कोई नदरी हर निहालिया गुर प्रसादी बुझिया जा बेकार एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नू पठाए बजाया बाजा पोनो द्वारे प्रगट किए दसवां सूत्र खाया तेरे रूप नौ नौ नित स्थान न जाई पाया
1: सचो त्यावे

0: जन के पल में डलदारे
1: पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मापत वेद प्रतेव अभेद उचारे कीट की पतंग कुरंग पुजंग मकूस पवित्र पवान बनाए वेद पुराण कितेब पुराण हसेब सके कर हाथ न आए
1: पूर्ण प्रेम प्रभाव में आप सो कि श्री पद्मा पद पाए
0: पार अनंत अगात अद्वैत सुकूत पवित्र पवान पाए
1: अंत विहीन अनंत नाम लागो दो कृष्ण

अंत की बार माल पन्मा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई।

0: खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह ठाकुर
1: अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम सुख कनेर कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमते

सर दीन, दयाल न तुम सर, अब पतिया क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मनै, जन का पूरन रिजै।

बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवा, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवा, चिर पयो दर्शन देखे। सो कहो तल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण होवे सिफत खसम दी। मूरे अरसों कुरसों, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सज्जन।

हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन मन ने जन कौ पूरन दीजे बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पात साहो मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक

भय एक असर सरण सरण कर आई संत अनुग्रह भय मन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जा कहो हर रंग लागो इस जुग मह सो कहिया तह सूरा आत बजना सगल वसता कह जाका सतगुर पूरा ठाकर गाया आत्म रंग सरमी पह सरनी पावन नावत आवण स समावन संग रहा जन के चरना वसे मरही अरा संग पनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक का सुख एही तनासरी महला पंजवा जतन करा मनुख डहकावा ओ अंतर जामी जाना पाप करे कर्म कर पावा पेख करा निर्बाना जानत दूर तुमह प्रभ नीर ओत ताक ओत ते ओत पेखा आवा लोभी फेर रहा जब लग टूटा नाही मन भरमा

रहा। चरण तमार हृदय वसे संतन का संग पाव, सोग अग्न में मन ना व्याप, आठ पर गुण गाव। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मद अत प्रभ जापण, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना सापण। तनासरी महला पंजवा। मांगो राम ते सब थोक, मानख कौ जाचत शरम पाइया, प्रभ का सिमरन मोख रहा। कोखे मुन जन सिमरत प्राणा, वेद पकारे कोख, कृपा सिद्ध सेव सच पाइया, दोवें सहेले लोक। आन उचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिनसे शोक। तनासरी महला पंजवा। तृष्णा बूजा हर का नाम, महासंतोख होवा गुरबचनी, प्रभ सिउ लागे।

दृष्ट प्रावतार हो कृपा करतार हो पूजा गह कूपते काट ले वो रहा काम क्रोध कर हन माया कह बंद अनक दुखा तन साध पूरी प्रभ बिना हा न रखन हरा नाम समरा वो सरन सूर पतत उदारणा जी जंत तारणा वेद अचार नहीं अंत पायो गुणा सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वसल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजा मिटे कमाणे पाप चराणे साध संगत मिल मोवा जीजा रहा राज जोबन बिसरंत हर माया महा दुख एह महात कह आस प्यास रमण हर कीर्तन एह पदार्थ भागवंत लह शरण समरथ अकथ गोचरा पतत उदारण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सरबत पूर्ण ठाकर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहा वड़ा भाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रप सोग अगन तिह जाना व्याप सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर तन दुख किस पाप न फेड़े जम जिंदार न आवे नेड़े त्रिसना अगन प्रभ आप बजाई नानक उदरे प्रभ सरणाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच पूजन खाया मंता नृसना नाम त्याया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहा अनक प्रकारी वस्त्र उड़ाई हंदन कीर्तन हर गुण गाय हस्ती रथ आस आसवारी हर का मार्ग हृदय नहार मन तन अंतर चरण त्याया हर सोखन दान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर का चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर

क्या काशी क्या उखर मग हर राम हृदय जो होए इंद्र लोक सवलोकी जबो उषा तप कर बोहर अबो कहा क्या मांगो के सथर नाही राम नाम रख मन माही रहा शोभा राज बिपै बड़ियाई अंत न कहूँ संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इंते कहो कम न सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमर बिन बूढ़ ते दकाई रहाओ बनता सुत देह करे संप सुखदाई इन मैं कसना है तेरो काल अवध आई अजामल गज गन का पतद कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन परमै तऊ लाज न आई राम नाम साड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीब खदाई उपर मंड पसाई मार कंडे ते को अदकाई जिन तरण तर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहा मेरी मेरी कैरों करते दरजो दिन से पाई बारा जोजन सतर चली था देहरी गिरज न खाए सर्ब सोन की लंका होती रावण से अदकाई कहाँ पायो दरबा दे हाथी खेन में पही पराई दुर्बासा से

सब जन्म अकथा। जिन साधु चरण साध पग सेवा तिन सफलो जन्म सनाथा। मोको कीजा दास दास दासन को हर दया तार जगनाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाला मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजा जन नानक चले मलंथा। जैत श्री महला चौथा। हीरा लाल अमोद कह पारी बिन गाह कमी का काखा। रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा। मेरा मान गुबत हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिलया हीर पराखा। रहा मानमुख कोठी अग्ञान अंधेरा तिन कर रतन ना लाखा। ते उजड़ भरम मोए गावारी माया भयंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी कै हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जिहवा क्या गुण आख बखाणा तुम वड अगम बड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत श्री महला चौथा। हम बारक कसु ना जानहा गत मित तेरे मूर्ख मुगद एना। हर कृपा तार दीजा मत उतम कर लीजा मुगद सयाना। मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मलायो गुर साधु मिल साधु कपट खलाना। रहा गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा हीरा मेरा प्रीतम नाम पराना। बिन नावा मर जाया मेरे ठाकर ज्यो अमली अमल लबाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तू तिन तुर पाग पराना। तिन हम चरण सरीव खिन खिन जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकर जन बिसरिया चिरी मलाना। धन धन सतगुर जन नाम दरड़ाया जन नानक तिस करबाना। जैत श्री महला चौथा। सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागे बा। माया भयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसर काढ़ बा। मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाख बहरा। तन तन बड़ पाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अग्न बुझी साध पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाए बा। ते दूजा पाए पवे ग्रभ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुरसाध पग सेव हम हर मीठ लगाए बा। जन नान करेण साध पग मांगा हर होए दयाल देवाए बा। जैत श्री महला चौथा। जिन हर हृदा नाम ना बस्यो तिन माद कीजा हर बांजा। तिन सुनी देह फिरा बिन नावा ओ खप खप मोए कराजा। मेरा मन जाप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रवतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहा। हर कीरत काल जोग पद उत्तम हर पाइया सत गुर माजा। हम बलहारी सत गुर अपना जिन गुबत नाम परगाजा। दर्शन साध मिलो बड़ भागी सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साहू पाया बड़ दाना हर किए बहु गुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा। धर्म दाई है धर्म राय दर काग दफारी जन नानक देखा समझा। जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई बड़पागी मन चलत हो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजा नित वाजी हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरा मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलो लाए चपीड़ा। रहा सागत बंद पए है माया बिख संचे लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च ना सका जमकाल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगा

हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत लगे पग साध गुर मिल साधु पाखाण हरियो मन मूड़ा जैत श्री महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटा हमारा हर हर सतगुर पुरख मलाभ हो गुर मिलया सुख होई राम हर गुण गावो मीत हमारी हर हर नाम रखो उर तारी हर हर अमृत बचनाभ हो गुर मिलया प्रगट होई राम माधुसूदन।

प्रगुरुदेव फिर सतन या श्लोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भतः संचंत विख्या सदन सिंदर नानक बिन हर संग न चालते पे खंदड़ो की पुल तुम दिसम सोहना अंड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चलद्या नाल न चला सो क्यों संजिया तिसका कहो क्या जतन जिस ते बंजिया हर बिसरिया क्यों तरपतावा ना मन रंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समझिया ओह कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया सलोक नच राज सो।